किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गई। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है।

लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, लहजा समझ में आता है मुझे अब हर किसी का, बस किसी को शर्मिंदा करना अब मेरे मिजाज में नहीं।

0: वाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकारी चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियन्त्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृ सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन्ड कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाजी के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की. केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया. 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा. दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की. फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया. और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाजी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे. ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा

0: द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल है। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास

0: मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान के प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित

0: व्यवस्थित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
3: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रिया

0: अंशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है।
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक, शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
0: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
0: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
1: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
0: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
0: तो दीजिए हिंट।
1: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
0: जी।
1: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
0: जी अजीत जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
1: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
0: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
1: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
0: जी।
1: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
0: श्रोताओं, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
1: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
0: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
1: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
0: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
1: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं।
0: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
1: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
1: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है डायमंड सीड किसे कहते हैं।

0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
2: ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
4: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
4: लेकिन

0: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
0: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गाड़ी में बैठ कर
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
7: महाराज जय हो,
8: महाराज जय हो,
7: महाराज जय हो।
9: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द

0: का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनी आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50। जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा, लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना।

0: कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्ययान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
1: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
2: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम अच्छे हैं।
3: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्ययान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कर आचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी, मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कर आचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
1: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
2: विशाल गैसों का गोला?
1: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
3: भाई वाह,

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा, दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी, शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: देश नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीज आपने अदम्य साहस वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज।

0: अशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर, अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी,
0: तो सर जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे, जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका, इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी, बिल्कुल ठीक बहुत बता
0: जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आप इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे, और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
0: जी
1: मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ इसमें। जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में? और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से

0: भी जाती जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहाँ से ख़त्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिर बाद में फ़ायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
0: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे नौजवान युवक को, भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बाला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
1: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई वहां पर, आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
0: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
0: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपर सर डिप्टी कमांडेंट थे
1: जी,
0: कार्मिक लोग थे, बहुत उनका अहम योगदान था इसमें
1: जी।
0: एक, जी जी जी तो बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त
1: जी,
0: भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से। जी जी जी
1: सर, हमें ये भी हम यहाँ जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
0: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोग को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
1: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
0: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
1: जी,
0: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था, गोलियों का बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
1: क्या
0: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
1: जी
0: जी जी,
1: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, उसके बारे में बताइए।
0: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बाद फिर एक और बिहार में इसमें दो नक्सली मारे गए थे,
1: अच्छा,
0: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
1: जी जी, और दो बार आपको मिला है,
0: दो बार गैलेंट्री,
1: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूं, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
0: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
1: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
0: अच्छा,
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया,
1: हमने नहीं, हमारी टीम और हाँ सब मिलकर,
0: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं एक रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले, सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स में ज्वाइन किया जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये

0: अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
0: अच्छा,
1: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
0: अच्छा।
1: हाँ, वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
0: तो सर आपकी जो जी एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
1: हाँ
0: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
1: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय असम जल रही थी NDFE का उससे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन SSB बहुत अच्छा काम किए थे उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एम्बुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय जी।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, GD मतलब जनरल ड्यूटी।
1: जनरल ड्यूटी जी, जी। GD मतलब जनरल ड्यूटी।
0: तो हाँ, ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
1: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
0: जी।
1: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
0: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोनाबाड़ी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
1: सलोनाबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
0: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत?
1: अच्छा, में मेरा वहाँ से शुरुआत। अच्छा, हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में।
0: बटालियन
1: जी जी।
0: अच्छा
1: जी, जी, जी।
0: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन UP में भी आप रहे?
1: हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा।
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा,
1: असम में आ गई हॉली में जी।
0: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्सुंग में मेरी पोस्टिंग
0: जी
1: है।
0: अच्छा, एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
1: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में।
1: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी।
1: जी हाँ, लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज को हम याद
0: अच्छा
1: करते हैं जी।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी।
0: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में
0: जी।
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ,
0: इन्फॉर्मेशन
1: जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है
0: जी। जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे, सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है?

0: और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो।
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं।
1: अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी, तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
0: जी, जी। सर,

0: सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ओवर बिलेव्ड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली. सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ऑबिसियंस टू देम माई सेल्फ. शंकर लोध है फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से. जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम. आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर. यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है. तो सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जैतपुर नई दिल्ली से. जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से. प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये.
1: जय हिंद. हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब एसएसबी ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को. आपने क्या क्या कोर्सेस उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से. उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें.
1: फोर्स से ही मैंने की. जी जी जी जी.
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स गोल्डम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये.
0: अच्छा,
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है.
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं.
0: अच्छा.
1: खाना. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है.
0: ओके.
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज. और
0: अच्छा.
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल.
0: अच्छा.
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है. जी,
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर.
1: जी जी.
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें. जी जी जी. जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा.
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे.
1: इस टाइप के ड्रिल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम.
0: अच्छा. तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी जी जी जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ, लगे रहना है साथ में, हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा. यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा जी, भरे जी, रखते हैं.
1: हाँ.
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे

0: तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ एक लीटर पानी की बोतल।
1: जी जी जी हाँ, तो हो जाता तो, है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है। अच्छा। अचानक सब चीज होता है,
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके,
1: हाँ,
0: एक तरह से ड्रिल, ड्रिल,
1: ड्रिल, ड्रिल, हाँ,
0: अच्छा।
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी,
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी। हाँ,
1: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
0: मोटिवेटेड रखने।
1: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी,
1: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
0: जी, आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी,
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी।
0: अच्छा,
1: करना है जी उसके।
0: अच्छा,
1: उसके बारे में।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आपको मजबूत बना सके, वो भी आपने किया हुआ है,
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना।
0: जी जी,
1: उसमें एक्सपर्ट होने जरूरी है।
0: जी
1: जी
0: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए।
0: जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: राजवीर का यहाँ पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय नहीं मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे, इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतु राज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं?
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं, जो आंतरिक सुरक्षा में जो काम, जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: okay.
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी, ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर, आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी, ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर, एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है, लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद, भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आप, आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।

0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता देंगे क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
1: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल के तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो, दिल से दिल तक।

0: ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಒಲವಿನ ಆಲಾಪ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 101.3. ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಧು ಚೈತ್ರ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು 101.3.
1: ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 8:24. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ.
2: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೆ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ವಿಶಾಲ್ ಶರ್ಮಾ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी. श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की. भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की. पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी. केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया. मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया. और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं. नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है.
3: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है. हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है. अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया. आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं. ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे. श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है.
3: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है. लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही. इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है. श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा.
3: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी. इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है. भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट किए हैं.
2: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है. दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की. भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4: The leaders reflected on
5: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
6: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
7: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
6: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नेतृत्व हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरल पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और आरएफआईडी आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
2: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले 1 वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा,

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ उदयन जी. उदयन जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 580 points, Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields of including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. And global crude oil prices declined.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 580 अंक बढ़ा, निफ्टी 24,176 पर बंद हुआ. भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए और कच्चे तेल के वैश्विक दाम घटे.

0: आज 0.7% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 579 अंक बढ़कर 77,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में 0.5% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.2% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। इससे पहले बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और लगातार दूसरे दिन भी इनमें बढ़त रही। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और सकारात्मक भू राजनीतिक रुझानों के कारण निवेशकों का आत्मविश्वास बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices ended over 0.7% higher today. The Sensex rose 579 points to close at 77,502. The Nifty gained 170 points to settle at 24,176. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index added 0.5% and the Small-Cap 100 index climbed more than 1.2%. Earlier markets opened on a positive note and extended their upward momentum for the second consecutive session. Investor sentiment remained upbeat, supported by softer crude oil prices and positive geopolitical developments.
0: Sensex में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंफोसिस 5.5% से अधिक, वहीं टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 4.5% का उछाल आया। उधर खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में लार्सन एंड टूब्रो 0.8%, मारुति में लगभग 0.5% और एक्सिस बैंक में 0.3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 20 out of 25 sectors ended in positive zone. Among the key gainers, IT climbed almost 4.4%, focused IT rose 4.3%, and consumer durables as well as realty added over 1.4%. In contrast, capital goods fell over 0.7%, telecommunications slipped nearly 0.7%, and power lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,536 companies advanced, shares of 1,740 companies declined and shares of 182 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 15 पैसे कमजोर होकर 95.39 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उदयन, अगर हम आज के ट्रेजेक्ट्री की बात करें कि आज किस तरीके से मार्केट ने प्रदर्शन किया और क्या प्रमुख कारक रहे जिस वजह से मार्केट का ये रुझान हमें देखने को मिला, तो आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, ये मतलब सारी जो बातें हैं एक चीज के साथ हम आराम से जोड़ सकते हैं, वो ये है कि तेल से जुड़े हुए सुर्खियाँ क्या रही, हेडलाइंस क्या रही, वो सब पॉजिटिव रही हैं कि जैसे अपने
0: दाम घट गए,
2: कुछ प्रोग्रेस इनडायरेक्ट टॉक्स में के रिपोर्ट्स आए, कतर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ रिपोर्ट्स आए, कुछ सुपर टैंकर्स जो हैं सऊदी अरब का तेल तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स के आसपास वर्थ ऑफ ऑयल वहाँ से निकला है। ये बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे यहाँ तो नहीं आ रही है, ये चीन जा रही है और कुछ और देशों में जा रही है, पर ये एक फ्लो ऑफ गुड पॉजिटिव हेडलाइंस, मतलब बैड न्यूज़ नहीं आ रहा है। और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट सबसे पहले करेंसी मार्केट से एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन, वो सारा एक डोमिनो इफेक्ट पॉजिटिव, इसको वर्चुअस साइकिल बोलते हैं, वो उस तरीके से घूमता है। और आप देखेंगे कि हर जगह में कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए हम रुपए के वैल्यू में वो बात नज़र नहीं आ रही, पर आरबीआई ओवरऑल एक मैनेजमेंट कर रही है जिसमें वो फॉरेक्स रिजर्व्स, आपका करेंसी में मूवमेंट ज़्यादा ना हो, उसके बारे में, तो वहाँ पे उसकी बात को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखना पड़ेगा। पर इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं, आप सब जगह में एक इससे रिकूपिंग जो स्लाइड हुआ था वो ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है।
1: जी, उदयन, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर्स। वी हैव सीन अ रैली टुडे इन द आईटी सेक्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड दैट वी हैव बीन सीइंग इन द आईटी सेक्टर। यू नो, इफ यू लुक एट इट ओवरऑल, इन द लास्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस इट टैंक्ड 17%, इन द लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस इट वॉज डाउन 7%, बट टूडे

0: सेक्टर में गिरावट की वजह से दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 8% फिसला। जापान का निकेई 2.5%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2% और ताइवान का ताइएक्स 0.5% से अधिक लुढ़का। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1% से अधिक और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.8% ऊपर बढ़ा। लगभग 8% हम कॉस्पी में देख रहे हैं गिरावट, महोदय किस तरीके से आप इसे देखते हैं और ये क्यों किस तरीके से आ रहा है, आप प्लीज इसे बताएं।
1: देखिए, वो एक रन अप था जो बिल्कुल तेजी के साथ होता चला गया और कई बार क्या होता है चिप्स, आप जैसे हमारे भारतीय बाजारों में देखते हैं कि पहले एक सर्टन सेक्टर में आपको पसंद आने लगे लार्ज कैप, फिर आपने कहा कि नहीं नहीं लार्ज कैप तो ये तो बहुत महंगे हो गए, थोड़ा और नीचे चलते हैं, मिड कैप में चलते हैं। तो उस तरीके से है, जब आपने देखा TSMC और डच कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो डिज़ाइन करती है चिप्स, तो वो जब आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप सैमसंग और हाइनेक्स पे चले गए जो कि आपके दे आर आउटस्टैंडिंग लीडिंग मेकर्स, पर आप उस वहाँ पे फोकस करने लग गए। और उसके अलावा तब हेडलाइंस भी ऐसी थी, एनवीडिया ने हैंडशेक किया, तो उससे आपको सारे जो कंपनीज हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक जबरदस्त हैंडशेक कर रहे हैं।
0: मैं यही बल्कि कहना भी चाह रही थी कि अभी यही बाजार है जो अपनी ऊंचाइयों पर भी गया और वही बाजार है जो आज हम देख रहे हैं।
1: तो जहां पर भी अगर जब हेडलाइन, जब आप फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जैसे अब थोड़ी देर पहले बात होती थी व्हेन थिंग्स आर आउट इन द फ्यूचर, इट्स अ ग्रोथ सेक्टर, आपको नहीं मालूम कि ये आप किसी को कह नहीं सकते कि आज ये आपने पिछले 3-4 महीने पहले ये बोला था, ये क्यों नहीं हुआ, ये दिस इज नॉट राइट, 4 months डाउन द लाइन इट्स प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट 3-4 years चीजें होंगी। सो पीपल आर रेजिंग मनी राइट नाउ, तो उसमें वहां पे जब आपको हेडलाइन ऐसा कुछ आता है, बिकॉज ये कन्विक्शन जो है आप एक जिसे लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे सर्कस कितने लोगों ने रियल लाइफ में देखी है, तो वहाँ पे ट्रेपीज आर्टिस्ट होते हैं जो हवा में झूलते हैं, तो एक आदमी छलांग मारता है या लेडी छलांग मारती है और उनको पकड़ा जाता है, दूसरे लटक रहे होते हैं वो पकड़ते हैं, उसको लीप ऑफ फेथ बोला जाता है। तो ये लीप ऑफ फेथ की तरह है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितना कन्विक्शन है, आपके फेथ है,
0: यानी सुर्खियां पढ़ करके आप
1: जी आपको ये है कि आपने मैंने वो छोड़ दिया है जो मैंने पकड़ी थी और मेरा जो साथी है वो मेरे को पकड़ लेगा, वैसे तो नीचे नेट है जमीन पर दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ जब डगमगाने लगती है या उसमें कमजोरी आ जाती है तो आप वो देख रहे हैं जो आज आप देख रहे हैं, क्योंकि कुछ सुर्खियां ऐसी निकली कल जिसके वजह से देयर इज दिस होल रिविजन कि नहीं मे बी वी आर जस्ट गेटिंग टू बुलिश आउट देयर। तो ये चीजें जो एडजस्टमेंट होती है, समटाइम्स यू आर मूविंग ऑन द फ्यूल्ड बाय सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट का जो फ्यूल है जब वो थोड़ा कम होता है तो आपका गियर लोअर गियर में आ जाता है।
0: भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा AI सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। दोनों ही देश आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को समझते हैं।
2: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रौद्योगिकी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा।
2: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज AI के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय AI इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक AI विकास

0: को नई गति और शक्ति देगा।
1: उदयन, अभी प्रधानमंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर जो क्षमता है उसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति शक्ति देगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम भी ऑफकोर्स कम्पीट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक परिकल्पना है विकसित भारत की, उसको किस तरीके से ये साकार करने में मददगार रहेगा?
2: देखिए, कई बार कई चीज़ें हैं, अब आपको जीरो से स्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो अगर आप वो पार्टनरशिप से करते हैं, तो जहाँ पे आपके दूसरे एक पार्टनर कंट्री हैं, जिस उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उन जो जहाँ पे वो सक्षम ज़्यादा है हमसे, वो चीज़ें वो अपने टेबल पे लाते हैं, और हम हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कैपेबिलिटी, वो हम मेज़ पे लाते हैं। तो ये वो वाली अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जहाँ पे हमारे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो डिज़ाइनिंग जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको मिलके हम वो चीज़ें प्रोड्यूस करें। क्योंकि देखिए, एक पर्टिकुलर देश का नाम लेते हुए ना लेते हुए ये कहना ज़रूरी है, दोनों देश दूध के जले हैं
3: जी,
2: तो छाछ भी वो फूक फूक के पी रहे हैं
1: जी,
2: ठीक है। तो वो क्रिटिकल मिलेनियल से जुड़ा हुआ जो एक्सपीरियंस है, दूसरी चीजें जो है, उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ये जरूरी भी चाहिए आपको, क्योंकि यू कैनॉट जस्ट स्टॉप, कार प्रोडक्शन बंद हो गया या कुछ और हो गया, डिसरप्शन हो गया, जस्ट बिकॉज कोई एक स्टेटमेंट चली गई, तो वो उसके ये वो तो छोटी सी बात है, ये जरूरत भी है, और ये लेवरेज किया जाए। जैसे कि मैंने कहा, ये अंडरसर्व था, ये अब वहां पे पहुंच, उस पायदान में जा रहा है, उस स्तर में जा रहा है जहां पे इसको होना चाहिए था।
3: राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिलेटेड स्टोरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड दैट इंडिया Japan relations are truly very special, and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits.
4: कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते, और यही कारण है कि लगातार पिछले चार वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है।
3: In her address, Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. She said, at the recent G7 summit, she had presented three proposals to strengthen energy security, ensuring free and transparent energy trade, announcing strategic energy stockpiles, and promoting cooperation between consuming and producing countries. Question here to you, Udayan. You know, during this today, when these MOCs were signed and agreed upon, a very important point was that the two countries have set a target of 10 trillion yen to be invested by Japan in India in the next decade, and doubling the number of Japanese companies operating in India. Now, while this is obviously very good news for India, but overall, if you look at it, India and Japan are two of the most important economies in the Asian region. So how would it benefit not just the two countries, but even the whole area, the Asia as per se?
2: It has already been happening, Anuva. Scooter production, they don't cater. I'm talking about Japanese.
3: Yes.
2: They're not just here, they get exported. So success story, that template can be replicated all through.
3: Right.
2: And also important is, sometimes some of these large enterprises, they also spawn a lot of smaller enterprises.
3: Yes.
2: You know, so if we need to have small businesses that will get, become very large. So some of these auto parts manufacturers who were with Maruti, they used to be so small. Now with the growth of Maruti, they have become extremely large. So that is the kind of model. Apart from there are other models,
3: yes,
2: also simultaneously that have to be followed. But for Japan, we are seeing this very successful template, which can be happily replicated.
3: Right. Let's move on to the next story. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery refineries being established after a gap of 10 years. A very, very quick comment from you, Udayan, on this development about India expanding its refinery capacity.
2: With growth, they have to do it. The good part is that these are the capabilities of our refineries are now world recognized. Yes. We have one of some of the best refineries in the world.
3: Right. Let's now look at the prices of commodities. Global crude oil prices declined today. Investors weighed signs of progress in indirect negotiations between US and Iran, easing concerns about potential disruptions to crude supplies. Brent crude was trading 1.6% down at $70.41 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 1.9% down at $67.28 per barrel when reports last came in. Udayan, a very good news, of course, from India's point of view, obviously, because we have a very big import, bill is very big when it comes to crude oil. So, are we looking at, hopefully, prices may be coming down? All that's all in the future.
2: Maybe it'll probably have to play out. The situation is still fluid, but it's not getting worse.
3: Yes.
2: So that for listeners of this program who are, want to know about markets react to bad news.
3: Yes.
2: Or uncertainty. So that is not happening. We will take this, and because all the doomsday things that are being said by some people,
3: yeah,
2: it just turned out that it was just a bad dream.
3: Thankfully.
2: Let's hope it turns out like that.
3: Right. And let's now have a look at the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading marginally up at 1,44,960 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.5% up at 2,31,320 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona 0.1% ki tezi ke saath 1,44,540 rupees prati 10 gram par tha, aur sitambar anubandh wali chandi आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ 2,31,443 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यन, हमने देखा पहले कि अभी कुछ दो चार दिन पहले की अगर बात करें तो थोड़े से करेक्शंस आए, हमें नजर आए थे, जिससे कि बहुत लोगों के दिल में खुशी भी होगी, बहुत लोगों को शायद दुख भी हो, लेकिन अभी हमने देखा कि थोड़ा सा एक मार्जिनल राइज देखने को मिला है. तो आप किस तरीके से आने वाले वक्त में प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं?
2: देखिए, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी रहती है, फाइनेंशियल सिस्टम में नर्वसनेस रहती है, तब तो वो सोने के दाम में उछाल जरूर आएगा. अगर आपके केंद्रीय बैंक जो खरीदारी कर रही थी, वो एक बहुत बड़ा कारण था. तो अगर ये चीजें कंट्रोल में रहती हैं, ये एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, तो ये इसी स्तर पे रहेगा. इसके नीचे जाते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूँ. और ये जो निवेश के लिए जो देखते हैं, उनको गोल्डन रूल है 5-10%. 100 रुपए अगर आपके निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, 5-10 रुपए से एक्सीड नहीं होना चाहिए.
1: बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए.
2: धन्यवाद.
3: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 580 points. Nifty settles at 24,176. Indian-Japan exchange agreements in fields including economic and energy security, pharmaceuticals and AI, and global crude oil prices decline. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी के चैनल एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन,

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे। मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, मैं ना रहूंगी तो भी असर बाकी रहेगा, कभी कभी बेवफा यूं भी सोचोगे मुझे, कभी कभी यूं भी बेवफा सोचोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अगला गीत आवाज़ है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है कल आज और कल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आज आपके साथ हूं मैं जयती। निशिगंधा में अगला गीत, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की।

शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद। भीड़ के जंगल से निकला रेत में तन्हा भटका।

का चांद, याद की परछाई लिपटी देर तलक सहमा था चांद। नींद के सौदे हार गया जब, नींद के सौदे हार गया जब, आंखों की देहरी आया चांद। मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, मैंने पूछा कुछ भी नहीं था, गुपचुप दिल को पढ़ता चांद। एक ही चेहरे की खातिर, एक ही चेहरे की खातिर, हर मौसम में भटका चांद, हर मौसम में भटका चांद। रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद, रात के आखिरी सन्नाटे में खुद से मिलता जुलता चांद। शब की पेशानी पे ठहरा दर्द की स्याही में डूबा चांद, दिन की धूप ने जो ना छोड़ा रात ने उसको सौंपा चांद, रात ने उसको सौंपा चांद। अगला गीत, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अगला गीत फिल्म का नाम है पारसमणि, आवाज है लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज है लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया, सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय शिक्षक प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अकादमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में

साइक्लिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइक्लिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट अगले महीने की 23 तारीख से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने की इस महफिल में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है बहारों के सपने, आवाज है लता मंगेशकर की।

तुमाना एक रोज, तुमाना एक रोज मुझसे मिलने, तुमाना एक रोज मुझसे मिलने, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, मैंने बहुत संभाल कर रखा है तुम्हारे हिस्से का वक्त, तुमाना एक रोज मुझसे मिलने। और अगला गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है आस का पंछी।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गीत सुहाने में अब जो अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है जंगली, आवाज मुकेश और आशा भोसले की।

तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, तेरी हर बात को दिल पर उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, रोज चेहरे पे नए रंग उतर आते हैं, तेरा किस्सा है ये हर बार छुपाया हमने। एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, एक शोला सा उठा था कभी बस्ती के तले, वक्त रहते ही उसे खुद से जलाया हमने। बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, बात अधूरी ही सही मगर कहते रहे, वक्त की चाल को चुपचाप निभाया हमने। तेरी हर बात को दिल पे उतारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने, जिंदगी हार दी खुद को संवारा हमने। और अब जो फिल्म, जिस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसका नाम है बॉम्बे टू गोवा, आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

देखते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बत में हिसाब नहीं होते। सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, सोच समझकर तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं। दिल जहां उतर आए वहां सवाल नहीं होते। हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया, हमने चाहा तो किसी शर्त का सौदा न किया। इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते, इश्क में मुनाफे के अंदाज नहीं होते। वो जो कहते हैं कि पहले अक्ल से काम लेते उन्हें कौन समझाए मोहब्बतों में हिसाब नहीं होते। इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो, इश्क को इश्क ही रहने दो दलीलें न गढ़ो। आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते, आग के सामने अक्सर बयान नहीं होते।

गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है यशुदास की और फिल्म का नाम है सुनैना। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 3:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेवार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलांग में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेघालय टीचर ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये एकेडमी लंबे समय से चली आ रही कमियों, खासकर शिक्षकों की प्रशिक्षण से जुड़ी कमियों को दूर करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जाँच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी ओगदहान प्रांत में तीर्थयात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थयात्रा पर थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह श्रृंखला अगले महीने की 15 से 27 तारीख तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट अगले महीने की 15 तारीख से गाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। दिल ने धड़क कर जो कहा याद आया, किसी अपने का गिला याद आया। आज बोझिल थी जरा सांसों की चाल, तू परेशानी में था याद आया। दिन किसी तरह से काटा मैंने, फिर तेरा रात का वादा याद आया। लोग मिलते रहे चेहरे बदले, लोग मिलते रहे चेहरे बदले, फिर कोई भूला सा शहर याद आया। बात कहने की हिम्मत थी लेकिन जब वो चला ही गया याद आया। फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, फूल के नीचे बैठी रही देर तलक, दिल बहुत रोया तब याद आया, दिल बहुत रोया तब याद आया। और अगला गीत, फिल्म का नाम है कोयला, आवाज़ है उदित नारायण की।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। रिवायतों की धूल जब सांस रोकने लगे, तो कुछ सवालों का उगना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है गुप्त, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है सनम बेवफा, आवाज है लता मंगेशकर की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है आज का अर्जुन, आवाज है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में

0: सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों तथा प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में साइकिलिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। बैठक में साइकिलिंग के लिए व्यवस्थित रास्ता बनाने पर भी चर्चा हुई। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेवारी नहीं ली है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी मुग्दाहान प्रांत में तीर्थ यात्रा पर जा रहे 9 भिक्षुओं की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार 11 साल के एक लड़के ने पिकअप ट्रक से इन भिक्षुओं को टक्कर मार दी। अधिकारियों ने बताया कि मुग्दाहान प्रांत के कुल 35 भिक्षु तीर्थ यात्रा पर थे। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारज़बाल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पारो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। ओयारज़बाल के 89वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके जीत पक्की कर दी। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोशिया से होगा। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी तानिया हेमनाथ अमेरिका की दिशा गुप्ता को 21-16, 21-18 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The PM said India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
0: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस

3:10 हुए हैं। दोस्तों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना दिसारिया। कहते हैं जिंदगी में कुछ मौसम ऐसे भी आते हैं जब दिलों के बीच की दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं और मुलाकातों की खुशबू फिजाओं में घुल जाती है। इंतजार के बाद आने वाले ऐसे ही खूबसूरत पलों का एहसास कराता है फिल्म लवर्स का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की है।

दोस्तों, प्यार जब दिल की धड़कनों में बस जाता है तो हर रास्ता, हर मौसम और हर एहसास उसी का नाम लेने लगता है। मन किसी और दुनिया में खोया खोया सा रहता है और हर पल बस अपने प्रिय की यादों के इर्द गिर्द ही घूमता है। ऐसी ही मासूम दीवानगी और मोहब्बत की मिठास से सजा है हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से, और आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं।

कहते हैं प्यार कभी दस्तक देकर नहीं आता, तो वो तो चुपके से दिल में उतर जाता है, फिर मुस्कानें भी बेवजह खिलने लगती हैं और हर धड़कन किसी का नाम गुनगुनाने लगती है। ऐसे ही शरारत, मासूमियत और प्यार के रंगों से सजा है हमारा अगला गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं।

3:33 हुए हैं दोस्तों, एफएम गोल्ड यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो शब्द भी महकने लगते हैं। एक खत और उसमें रखा एक फूल कभी कभी पूरे दिल का हाल कह देता है। प्यार की उसी मासूम खुशबू, इंतजार की मिठास और रिश्तों की गर्माहट को समेटे है फिल्म सरस्वती चंद्र का ये सदाबहार नगमा। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में।

कभी कभी प्यार भरी एक छोटी सी नसीहत भी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देती है। साल 2066 की फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, इन बहारों में अकेले ना फिरो, छेड़छाड़ अपनापन और हल्की सी फिक्र को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की मधुर आवाजें इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। तो आइए आप और हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

प्यार सिर्फ इजहार का नाम नहीं, इसमें रूठना भी है, मनाना भी है और नोकझोंक भी है और मुस्कुराहट कर हार मान लेने का अपना ही आनंद भी है। कभी एक छोटी सी तकरार रिश्ते में ऐसी मिठास खोल देती है कि वही पल उम्र भर की याद बन जाता है। अब जो सदाबहार गीत आपको सुनाने जा रही हूं, इसी चुलबुले अंदाज और प्यार भरी नोकझोंक का खूबसूरत सा उदाहरण है। इसमें रूठने की अदा है, मनाने की कोशिश है और दिलों के बीच छिपा वो अपनापन है जो हर शिकायत को मुस्कान में बदल देता है। कुछ इस तरह

तेरे नैनों की मैं दीप जलाऊंगा। इस खूबसूरत से गीत को आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनुराग।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं झूठा कहीं का फिल्म का यह गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैभव तारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

0: जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सीरिया में दमिश्क के कैफे में विस्फोट में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। फीफा विश्व कप में स्पेन ने राउंड ऑफ 32 की मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। इंगलवुड में लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई, जिसके बाद पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में एक और गोल कर दिया। अब अंतिम 16 में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल या क्रोएशिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan reached agreements on several areas such as economic security, AI, defense and health that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister

सुबह के 4:10 और 52 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इस समय आप सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की मंजिल, पसंद और सपने अलग अलग होते हैं। दूसरों की राह देखकर अपनी दिशा मत बदलिए। जो आपके दिल को सुकून दे, वही आपकी असली पहचान बन सकती है।

बस होना चाहिए कि रिश्तों में सम्मान हो और जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज़ सुनने का साहस। जब आप अपने मूल्यों और सपनों के साथ आगे बढ़ते हैं तभी सफ़र भी खूबसूरत बनता है और मंजिल भी। आइए सुनते हैं सफ़र फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज़ में।

जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन नए नए सपने बुनने लगता है। यही छोटे छोटे ख्याल, यही अनदेखे एहसास आगे चलकर बड़े इरादों और नई मंजिलों की शुरुआत बन जाते हैं। फिल्म रजनीगंधा का एक खूबसूरत गीत है जो हमें याद दिलाता है कि हर सपना पहले एक ख्याल बनकर ही जन्म लेता है। इसलिए अपने मन की सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी उम्मीद कल आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकती है। तो आपको सुनवाते हैं रजनीगंधा फिल्म का गीत मुकेश के स्वर में।

दोस्तों, जिंदगी में गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी भूलों से सीख लेकर खुद को बेहतर बनाता है। पछतावा अगर बदलाव की शुरुआत बन जाए तो हर ठोकर एक नई मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। फिल्म जनता हवलदार का एक ऐसा ही गीत है। इसी आत्म मंथन और एहसास को ये गीत खूबसूरती से व्यक्त करता है। तो आइए सुनते हैं इस दिल को छूने वाला नगमा, जिसे स्वर दिया है अनवर ने। फिल्म का नाम है जनता हवलदार।

0: 4:30 होने को है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं समर्पण से बनते हैं। जब किसी की खुशी हमारी अपनी खुशी बन जाए तो जीवन के हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सच्चा अपनापन वही है जो बिना किसी अपेक्षा के मुस्कुराहट बांटता रहे। अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसमें प्रेम समर्पण और जीवन की खूबसूरत भावनाओं का अनमोल एहसास है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आनंद का ये गीत, आवाज मुकेश की है।
1: नहीं नहीं

कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि कोई हमें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन याद रखिए, हर सफर का एक पड़ाव ऐसा भी होता है जहां सबसे पहले हमें खुद से दोस्ती करनी होती है। जब मन मजबूत हो जाए तो दुनिया की हर राह आसान लगने लगती है। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिमान फिल्म का, आवाज किशोर कुमार की। ये गीत हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अपने भीतर के विश्वास में छिपी होती है। जब आप खुद का साथ नहीं छोड़ते तो मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है।

दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि जिंदगी में शोर बहुत है, लोगों की राय, उम्मीदें और सलाह, लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी भी होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, आपके अपने दिल की आवाज। जब इरादे सच्चे हों तो उसी आवाज पर भरोसा करना सबसे बड़ा साहस होता है। अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने विश्वास को कभी खोने ना दे। जो अपने दिल की सच्ची पुकार सुनता है, वही जीवन की राह पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, उसे आवाज दी है हेमंत कुमार ने। फिल्म का नाम है अनुपमा।

दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन तब बनती है जब रिश्तों में तालमेल, विश्वास और अपनापन हो। जैसे सुर और गीत एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही साथ, सहयोग और संवेदनाएं जीवन को अर्थ देती हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, जिसमें इसी मधुर संगम का खूबसूरत एहसास है। प्रेम, समर्पण और संगीत की मिठास से सजा ये नगमा आज भी दिलों को छू लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत की, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

जिंदगी हमें हर पल यही सिखाती है कि सच और आत्मविश्वास से बढ़कर कोई ताकत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने वजूद को छिपाकर नहीं बल्कि पूरे हौसले और ईमानदारी के साथ जीना ही असली जीत है। इसी जज्बे को आवाज देता है हमारा ये गीत, हमें प्रेरित करता है कि डर या संकोच नहीं बल्कि सच्चाई, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का हर पल जिए। जी हाँ, अब आपको सुनवा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हमराज़।

चलते चलते हम एक बात आपको जरूर कहेंगे कि रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है और इसी बदलाव का नाम है जिंदगी। कभी लोग साथ चलते हैं, कभी राहें अलग हो जाती हैं, कभी अपने भी दूर लगते हैं तो कभी अजनबी दिल के करीब आ जाते हैं। लेकिन इन बदलते रिश्तों के बीच अगर कुछ अटल रहता है तो वो है आपका आत्मविश्वास और आपका सच्चा व्यक्तित्व। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि लोगों के बदलने से अपने सपनों का रास्ता मत बदलो। हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बनाता है। तो दोस्तों, ये है कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते, आवाज किशोर कुमार की और सुमन कल्याणपुरी की है। आप आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम यानी अरुणिमा कार्यक्रम को समाप्त करने का। आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान की संबंध अति विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच से श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के साथ एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर

0: प्रयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों को की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा आज ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। सीरिया के दमिश्क के एक कैफे में विस्फोट में 9 लोगों की मौत की खबर है। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह विस्फोट एक कैफे के अंदर हुआ। यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स स्टेडियम में खेले गए मैच में मिकेल ओयारजाबल ने 36वें मिनट में गोल करके स्पेन को बढ़त दिलाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच के मैच के विजेता से होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. India and Japan have reaffirmed their shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interests, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation.
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. In the India-Japan Annual Summit joint statement, both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on 22nd April last year. They also noted the United Nations Security Council Monitoring Team report of 29th July 2025 mentioning the resistance front. They also condemned in the strongest terms the terror incident in Delhi on 10th November last year. The two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries towards the shared goal of a resilient and prosperous

5:10 और 56 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब बारी है कार्यक्रम भोर सुहानी की। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ, जिसे आवाज दी है कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है 1942, अ लव स्टोरी।

ये FM गोल्ड चैनल पर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। और अब जो गीत आप सुनेंगे उसे हमने लिया है कभी अजनबी थे फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।